0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

0: तेरी क्या है किसी ने मारा? टूट गया क्या तेरा बंदर, टूट गया क्या हाथी? टूट गया क्या तेरा बंदर, टूट गया क्या हाथी? नाना क्या फिर तुझसे बिछड़ गया तेरा कोई साथी?
1: कौन?
2: काबली वाला।

0: वाला रेडियो स्लग सेटन आन
1: लगी मस्त नजर की कतार हा हा हा मस्त नजर की कतार दिल के उतार

हम भी गए जग में तिगर हम मस्त नजर की कतार दिल कई उतर कई पास इन प्यार की राहों में वो इन प्यार की राहों में दिल भी गया हम भी गए जग में तिगर हम मस्त नजर की कतार हाँ।

जाना रेडियो दे अबे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

हे सुन वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

खुशी के साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम जोयतोस से परिवार कुंज बिहारी श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते अगस्त के 11 तारीख को 79 साल की आयु में नेखलन सीफन तख्यार औत। पति श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी की पत्नी, दो बेटा उदराई सिंह और मित्रा सिंह कुंज बिहारी की माँ, पतो मारेक अवतार की सास फ्रांसेस्का और संध्या के आजी, योहान की अजिया सास फिंस दानी नेतन और बेबी सोफिया के पर आजी, अम्स्टर्डम जोयतोस न्यूलांथोफ की रहने वाली श्रीमती लीलावती बाल्दियोराय कुंज बिहारी की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पहले सूरीनाम नेपालसराद के निवासी जो थी। अम्स्टर्डम जोयतोस से श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए अगस्त की 11 तारीख को 11 अगस्त को 79 साल की आयु में नेखलन सीफन तख्यार औत। पति श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी की पत्नी, दो बेटे उदराई सिंह और मित्रा सिंह कुंज बिहारी की माँ, पतो मारेक अवतार की सास फ्रांसेस्का और संध्या के आजी, योहान की अजिया सास फिंस दानी नेतन और बेबी सोफिया के पर आजी, अम्स्टर्डम जोयतोस न्यूलांथोफ की रहने वाली श्रीमती लीलावती बाल्दियोराय कुंज बिहारी की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सूरीनाम में पहले नेपालसराद के निवासी जो थी। अर्थी के अंत्येष्टि क्रिया बखराफनेस ये की गई है बीते हुए अगस्त के 19 तारीख को नेखंतिन ओखस्तिस को इनकर अंत्येष्टि क्रिया बखराफनेस हो चुके हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार कुंज बिहारी के दुख में शामिल है।

0: मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हसीन जब से देखा मैंने तुझको बस शायरी आ गई। शैलेंद्र सिंह की आवाज, फिल्म बॉबी का गीत, एक बार फिर किशोर कुमार के साथ लता जी को आप सुनेंगे।
1: हाँ? क्या कहा?

उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

खुशी के ये साथ गमी है पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम जोयतोस से परिवार कुंज बिहारी श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते अगस्त के 11 तारीख को 79 साल की आयु में नेखलन सीफंत ख्यार औत। पति श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी की पत्नी, दो बेटा उदराई सिंह और मित्रा सिंह कुंज बिहारी की माँ, पतो मारेक अवतार की सास फ्रांसेस्का और संध्या के आजी, योहान की अजिया सास फिंस दानी नेतन और बेबी सोफिया के पर आजी, आम्स्टरडम जोयतोस न्यूलांथोफ की रहनी वाली श्रीमती लीलावती बाल्दियोराई कुंज बिहारी की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। पहले सूरीनाम नेपाल स्रात के निवासी जो थी। आम्स्टरडम जोयतोस से श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए अगस्त की 11 तारीख को 11 अगस्त को 79 साल की आयु में नेखलन सीफंत ख्यार औत। पति श्रीमान रन सिंह कुंज बिहारी की पत्नी, दो बेटे उदराई सिंह और मित्रा सिंह कुंज बिहारी की माँ, पतो मारेक अवतार की सास फ्रांसेस्का और संध्या के आजी, योहान की अजिया सास फिंस दानी नेतन और बेबी सोफिया के पर आजी, आम्स्टरडम जोयतोस न्यूलांथोफ की रहने वाली श्रीमती लीलावती बाल्देवराई कुंज बिहारी की मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम में पहले नेपाल स्रात के निवासी जो थी। अर्थी के अंत्येष्टि क्रिया बखराफनेस ये की गई है बीते हुए अगस्त के 19 तारीख को नेखंतिनोखिस्तिस को, इनकर अंत्येष्टि क्रिया बखराफनेस हो चुके हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार कुंज बिहारी के दुख में शामिल है।

0: था।
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार सुनिए। अम्स्टर्डम ओस्ट फ्रोलिकस्ट्रात से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्त अख्तियार औत बेटा किशोर अकलू की माँ लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अम्स्टर्डम फ्रोलिकस्ट्रात से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्त अख्तियार औत बेटा किशोर अकलू की माँ लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी के दाह क्रिया कल इतवार के दिन में 3:30 बजे मोरखन जोंदाख मोरखन मेदाख हालफीर 3:30 बजे किए जाएंगे। वैसखार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टर्डम उस दौरप में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए अम्स्टर्डम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में ईनन तख्त यार और बेटा महेंद्र अकलू की माँ पतो इंद्रानी अकलू की सास लड़का नीलेश और दिनेश अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अम्स्टर्डम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 81 साल की आयु में ईनन तख्त यार औत बेटा महेंद्र अकलू की माँ पतो इंद्रानी अकलू की सास नीलेश और दिनेश अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखू की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी के दाह क्रिया कल इतवार दिन में 3:30 बजे मोरखन मेदा खालफीर किए जाएंगे। वेस्ट हार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार अकलू परिवार सुखू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: दिस इज बियंका दामिंग फ्रॉम द एनवीबी। ऑन दिस मोमेंट zijn er geen bijzonderheden onderweg en tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are Holland Hardest Radio Station.

तेरा चेहरा जब नजर आए, अरिजीत सिंह की आवाज और फिल्म का नाम सनम तेरी कसम। आपके साथ साथ और हजारों लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो को।

तुम्हारी आरजू के पलकों में कोई पलता है, तुम्हारी आरजू के साये में हाँ कोई पलता है। मोहित चौहान की आवाज में गीत को आप सुने, श्वेता पंडित हिस्सा लेंगे। इट्स यू आर डू जला रेडियो टू।

live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नेलॉन तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए

Blue Jana Radio, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद नाउ उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो दे अबे प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

अंतिम संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार सुनिए। अम्स्टर्डम ओस्ट फ्रोलिक स्ट्रैट से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार औत बेटा किशोर अकलू की मां लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवाल स्ट्रैट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुक्खू की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अम्स्टर्डम फ्रोलिक स्ट्रैट से बेटा किशोर अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते मंगलवार को 81 साल की आयु में एनन तख्तियार औत बेटा किशोर अकलू की मां लक्ष्मी अकलू और स्वर्गीय संगीता अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवाल स्ट्रैट की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुक्खू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी के दाह क्रिया कल इतवार के दिन में 3:30 बजे मोरखन जोंदाख मोरखन में दाख हालफ फिर 3:30 बजे किए जाएंगे। वैसखार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टर्डम उस दौर में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए अम्स्टर्डम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए मंगलवार को 81 साल की आयु में ईनन तख्त खियार औत बेटा महेंद्र अकलू की माँ पतो इंद्रानी अकलू की सास लड़का नीलेश और दिनेश अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग लीन के नाम से पहचानते और पुकारते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अम्स्टर्डम से बेटा महेंद्र अकलू और परिवार बहुत दुख के साथ सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 81 साल की आयु में ईनन तख्त खियार औत बेटा महेंद्र अकलू की माँ पतो इंद्रानी अकलू के सास नीलेश और दिनेश अकलू के आजी अम्स्टर्डम ओस्ट ट्रांसवालस्ट्रात की रहने वाली विधवा सोनमती अकलू सुखो की मृत्यु हो गई है। लीन के नाम से लोग पहचानते थे और जो कि स्वर्गीय श्री भागवत अकलू के विधवा थी। अर्थी के दाह क्रिया कल इतवार दिन में 3:30 बजे मोरखन मेदा खाल फीर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेर वैक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्थ फुरजोरखिंग परिवार अकलू परिवार सुखू और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

सात बजकर मेरे प्यारे सुनने वालों 20 मिनट गुजर चुके हैं। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे। तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी प्रिय सुनने वालों को। आज ये 12 तारीख जो सितंबर का दिन है, शनिवार है, वीकेंड है, बहुत खूबसूरत दिन गुजरा है, कहीं पर खूब सूरज अपना शक्ल दिखाए हैं, कहीं पर कुछ बरसे भी हैं, और इस वक्त हम बाहर देख रहे हैं तो ठंडी हवा भी चल रहे हैं। लेकिन उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर होंगे आप सेफ होंगे, एयरकंस लेकर वारम नरम गरम। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है।

मेरे प्यारे सुनो, सैटरडे नाइट फीवर पेश करने आए हैं आज इस शनिवार की रात्रि को, 12 तारीख सितंबर को, लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से ये प्रोग्राम फिर एक बार पेश किया जाएगा। तो सभी प्रिय सुनने वालों को जो चून किए हुए हैं घर पर, जो सुन रहे हैं शायद अपने परिवार के साथ, अकेले में शायद सुन रहे होंगे या अपने दोस्तों हित प्रेमियों के साथ, तो तहे दिल से स्वागत करता हूं। बेई ऑफ वेरिक वारदानोक, तो शुभ रात्रि आपको भी हम कहते हैं। दिल लगाकर काम करना या ऑन द साइन रेल फिल है दिलास्तर नारो जाला रेडियो, और वो भी अपने काम पर और चस्त लगा के। और कौन कौन जब बहुत ढेर सनाम के आदमी काम करते हैं तब बॉक्स एकदम वॉल्यूम एकदम ऊपर, और सब मिलकर गीत गाते हैं भी, गुनगुनाते हैं भी। तो एंजॉय यूलियाफन दिन्स नख दिन्स मेरे प्यारे सुनो लो, ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर फॉर्मूला आपको तो मालूम है, लेकिन फिर भी मैं दोहराता हूं कि एपर्स के नाम 8 बजे के बाद आप सभी के नाम से गीत हम चलाएंगे। जो लोग ऐप करेंगे स्टूडियो में अब 0 3 3 0 0 0 0, उन सभी के नाम से गीत हम चलाएंगे। एक लोकल मेरे ही लिस्ट का एक लोकल होंगे। ये मैं आंगेव ऑफ यू स्नेल नंबर विल ऑफ रुस्तक। और जो लोग ऐप करेंगे जल्दी से उनके गाने भी जल्दी से हम चला पाएंगे। एंड पेर ब्लॉक हैप्पी सॉन्ग सेव अख नंबर्स फॉर मेंस वाते कांट स्पेल। दोस आपको मालूम होना चाहिए कि देरी से आप अगोरेंगे तो आपका गीत शायद 2 ब्लॉक में आएंगे या 1/3 ब्लॉक में आएंगे। तो 0 3 3 6 3 0 0 0 आप अभी से ऐप कर सकते हैं स्टूडियो में। और मेरे प्यारे सुनो, आपकी हर एक काम का जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते जब भी आपको उजाला रेडियो को जरूरत पड़े, उजाला रेडियो का जरूरत अगर पड़े आपकी फरमाइश है जरूरी खबरें, मौत की खबरें के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते, तो आप दफ्तर को तार कर सकते हैं या तो मेल कर सकते हो। सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे, शाम में 3 बजे, फमानदा तो तमें 7 दा Smorgens vanaf 10 uur tot in de middag 3 uur kunt u kantoor bellen. 020-409-0807. 020-409-0807. Maar natuurlijk, lagataar job is gante 24-7. apemilkersekte.info@ujala.nl. हमारे socials पर चेक कीजिएगा, वहां पर भी तमाम information आपको मिलेंगे। तार का नंबर, ईमेल www.ujala.nl पे भी तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। और अगर आप जा ही रहे हैं सोशल्स पर, तो उजाला रेडियो के साथ

कभी अलविदा सीकर हम ना कहेंगे, अब भी तो शुरू भइल है प्रोग्राम। An evening in Holland, मेरे प्यारे सिनेवालो, that was the king of Hindi pop, मेरे प्यारे सिनेवालो, आज का opening selection। युवाड़ उजाला रेडियो पर आप चून किए हुए हैं मेरे प्यारे सिनेवालो, मैं हूँ रतन रामदुलारे पांडे और आप सभी को फिर एक बार तहदिल से स्वागत करते हैं। लाइफ एंड डायरेक्ट युवाड़ के स्टूडियो रतनाम से बना रहा हूँ आज फिर एक बार प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर विद ब्यूटीफुल लोकल्स, नए हैं पुराने सभी इसमें शामिल हैं। और एक हैट्रिक, एक ट्रियो हम चलाएंगे, एक पुराना कलाकार उनकी याद में आज हम उनका नगमाएं जो है प्रोग्राम बनाते वक्त उनके कुछ गाने हमारे नजर में आए हैं, तो उनका जो मुझे पसंद है तीन गाने लेकर आए हैं। एंड हकीकत अख्तर अलकार फॉर इमान स्पेल दी ओक फन हील आवर लोकल्स आउट लात मे वेट अल्स ये ऑफ ये दैट विल। Het is geen soul, het is in ieder geval Tani Chaltan Nagma. Tino. घड़ी की तरफ मैं देखो तो तीन मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनो हलो सरे सात बजकर एंड वी गान नार अत फॉलो नंबर शेखर कुमार फ्यूचरिंग मिस्टर

Shikhar Kumar or Mr. Black, mere pyare se nawalo. Swing in the number, aur jisme bhi shamil tha yaad aa raha hai. Tera pyar yaad aa raha hai. मेरे प्यारे से नॉल उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे अपना शनिवार अपना वीकेंड या एक फनाग हेरलक करेला गegeten met droge vis chur machri एकदम vers vers kinel meteen gemaakt en asambe shwiti. उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी कुछ ना कुछ चटक मटक खा रहे हैं होंगे, कुछ गर्माया गर्म पी रहे होंगे, बस आप भरपूर एंजॉय करें. 020-363-0808 पर आपको ऐप करना है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके नाम से गीत चलाऊं. अभी से कह देता हूं मेरे प्यारे सिन वालों, als je nu nog gaat appen, dan zit je in het blokje van 9 tot 10. ठीक है, इतने नाम हो चुके हैं कि आज से 9 बजे एकदम फुल अब 9 तो 3 में रहमत है. अगर आप ऐप करेंगे तो उसमें हम आपको शामिल करेंगे. 020-363-0808 और जो लोग ऐप करेंगे फरखीच नाम नहीं एंड अशब्लीफ हैव गदुल्ड. अच्छा गीव ook aan हां गीव ook aan कि तुम मांगे गो रस्टिक नंबर कि तुम मांगे गो ड्रक नंबर तो चलता. दिस इज झलक दिखला जा. अपना झलक हम दिखा रहे हैं हीरो निवार. आप अपना झलक अब दिखाइए.

झलक दिखला जा या ब्यूटीफुल मुका सिंह की आवाज में मेरे प्यारे सुनने वालों, अभी का अपना मनचाहा फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और लोकल का ये प्रोग्राम अभी हम बढ़ रहे हैं 8 बजे के ब्रेक की ओर। हाँ जी, 8 बजे के ब्रेक की ओर और 8 बजे की इश्तिहारों के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, आप तमाम एफर्ट्स के लिए हम शुरू करेंगे फुल हॉर्ड फ्रॉम बिन कुम्स फंड एपीएस, हम की चलाना शुरू करेंगे आप सभी के लिए। आप भी चाहते हैं या नन मुझे एप 020-363-0008 व्हाट हैप्पी खरीद स्थान रानी दत्ताई, पेश करता हूं इनका मैशिप, डीसी मैशिप।

0: ब्यूटीफुल रानी रटाई का ये देसी मैशअप मेरे प्यारे सुनने वालों से मामे जो हमने आप तक पेश किया है। त्रिनी पॉप की ओर आपको ले चलते हैं किमरन बुढ़राम और इंदर कन्हाए।
1: मुझे तुमसे प्यार था,
0: ओहो 100 साल पहले
1: तुमसे प्यार था।

या 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इंदर कन्हाय और क्या नाम है, किमलिन बुधराम जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनो, एक आखिरी गीत होंगे और इस आखिरी गीत के बाद हम 8 बजे के इश्तिहारे की ओर बढ़ चलेंगे। इश्तिहारों के बाद मेरे प्यारे सुनो वालों, हम फिर सेवा में हाजिर रहेंगे आप सभी का लेकर ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, और तभी हम शुरू करेंगे एपर्स के नाम से गीत चलाना। आपको ये भी मैं बता दूं मेरे प्यारे सुनो वालों, द ब्लॉक फन 8 tot 9 और द ब्लॉक फन 9 tot 10 kunnen nog 2 mensen, और जो देरी से ऐप करेंगे या दी खानदान इन ब्लॉक किए फन 3 tot 11, ऐसे चीज वजह है इतना दुरुक। अब हम क्या करी, आप ऐप कर रहे हैं मार, कभी कभी आप स्नेल से मांगे अपन गाना, दान गाने का निकसान दून वह निमान फोर ट्रैक तो हमने एक गीत को तैयार करके रखा है। एक पाल खसे हैं दत बाद में किसी के लिए जो पुराने लोकल्स पसंद करते हैं, एक है अपन लेजेंड फन फ्रूखर, उनके 3 नगमाएं छोटा छोटा नगमाएं हैं, तो तीनों हम मांगे लग बजावे किसी के लिए। अख्तर अलकार तनी चलता नगमा है, विल ये दैट साइन लात ती हुए तो पते, ठीक है, एंड अनस खाई कम सो मदर आए यू ही। एक आखिरी गीत मेरे प्यारे से नॉलो मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

Sa. मेरे प्यारे सिनेमा वालों, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आप ही का मन चाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये सैटरडे नाइट फीवर। आप सुन रहे हैं सभी लाइफ एंड आर्ट जो प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं यू आर के स्टूडियो रतनाम से। मेरे प्यारे सिनेमा वालों, मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी को जो लोग बाट में चून किए हुए हैं। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब पर से। That is 14 minutes over the clock from now. Ach, मेरे प्यारे सुनने वालों, 8:14 गुजर चुके हैं और यहाँ से एपर्स के नाम हम गीत चलाना शुरू करने जा रहे हैं। मैं से आउट से न्यू खत एप ना द स्टूडियो ऑफ 02-3630-0800 तो आपका गीत शायद हम 10 बजे के बाद चला पाएंगे, ये आपको मालूम रहे। और जितने लोग भी ऐप किए हैं आप सभी से बस यही कहेंगे हैव गुड, आपका गीत जरूर से जरूर हम चलाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहला ऐप जो हम में स्टूडियो में जो आए हैं वो था हार्लेम का आइलिन जी के ऐप, तो आइलिन जी को हम कहेंगे बहुत बहुत डंकी वेल धन्यवाद। उम्मीद और आशा करते हैं आइलिन जी कि आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे अपना शनिवार, अपना वीकेंड। साथ देने के लिए आज थैंक यू, आपने फिर जुड़े हुए हैं उजाला रेडियो के साथ, उसके लिए हम बेहद खुशी हैं। तो आइलिन के नाम ये नगमा पेश करता हूँ, जुबेर नौटियाल का एक नगमा जो फिर से गाया और सजाया गया है। आइलिन के नाम है ठालिम।

Я beautiful мероприятие нуало. मेरे प्यारे सुनो 10 मिनट बाकी हैं सरे 8 बजने में और आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। रोटरडम शहर का भैया जॉनी कालीचरण भी प्रोग्राम से हमेशा जुड़े रहते हैं और जब भी ये जुड़े रहते हैं तो जरूर से जरूर ऐप किया करते हैं। तो जॉनी कालीचरण जी आयत रोटरडम थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए एंजॉय योर वीकेंड और मत लो कि आप फिर एक बार चून किए हुए हैं उजाला रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं एकदम फर्स्ट फ्रॉम द पेयर्स नगमा निकाल कर आप तक पेश कर रहा हूं। एक नगमा जो गाकर सुनाएंगे जोचना और एक पुराना बकेन नंबर आप जानते होंगे जरूर इन्होंने फिर से सजाए हैं बनाए हैं रेमी लक्ष्मण जी के साथ फॉर जॉनी कालीचरण जी आयत रोटरडम

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनो वालों, बड़ी दुख दीना रे बड़ी दुख दीना, करे जवा में हाय राम, बड़ी दुख दीना जोचना जी की आवाज मेरे प्यारे सुनो वालों, एम प्रख्त बखलाए दो रेमी लक्ष्मण जी एकदम फर्स्ट फन फर्स अभी अभी निकल कर सीधे यहाँ स्टूडियो में पेश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे सुनो, मैंने आप सभी को कहा है कि तीन नगमाएं हैं ऐसी एक बहुत ही पुराने एल्बम से जो आज मेरी नजर में आए हैं, और मैंने सोचा ये एल्बम एलपी जो था इसमें से बहुत सारे गीत इन्होंने गाए हैं।

उन्होंने गाए हैं उस पर, लेकिन ये तीन जो आज अभी मैं सुनाने जा रहा हूं, फंडे सदरी हिल टिकट मेस, और सबसे ज्यादा भी हमने इन तीनों को चलाए हैं। और मैंने आप सभी से पूछा कि कौन या किसके लिए मैं ये तीनों चला सकता हूं, मुझे बता दो व्हाट्सएप पर। और प्रभा जी, बिना सुने सिर्फ मेरी बातों पर आपने कहा कि चलो मेरे लिए, तो प्रभा जी तम सनम सेंतरम डंकी वेल एक होप डच फन दुनिमर्स खात खनी थे पुराने हैं। हम बात कर रहे हैं मस्ताना और चेस्ट्रा, और उनके साथ एक लेजेंड जो अब हमारे बीच नहीं रहा, रमूर्ति लक्ष्मण जी। इनका एक एल्बम और इनकी काफी मशहूर नगमाएं जो इन्होंने मस्ताना के साथ गाए थे, उन दिनों काफी मशहूर था। मैं निकाल रहा तीन, और ये तीनों आपके नाम करता हूं, प्रभा जी आयता अम्स्टरडम सेंट्रम। तीनों नगमाएं आगे पीछे आप सुनेंगे हियर ऑन यू आर एंड थैंक यू वेल फॉर द स्टेमा, और आप कैप के लिए

मैं तो हार गई गोरी, मैं तो हार गई, तेरी नैना ने हाय मुझे मार गई, और आग लागे तन मन में दिल का परा थामना, राम जाने कब होगा सैया जी के सामना, और कुंची रहा एक बड़सन न लागे। एक प्रख्त नुमर्स रमूर्ति लक्ष्मण जी प्रख्त बखलाइज दौड़ मस्ताना और चसरा जिसमें बड़े बड़े थे, जैसे कि उस्ताद हफीज खान जी, द लेजेंड शहीद जी ऑफ द ड्रम, और फोकल भी कर रहे थे, हफीज खान भी फोकल कर रहे थे, सैक्सोफोन पर शारिफ बारिक भी है उसमें, खलील जी, या प्रख्तखुर नवप्रभा जी। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपने एंजॉय किए हुए होंगे। हम दनहाँ की ओर बढ़ चलते हैं, दनहाँ की ओर जहां उषा रहती है और उषा ने ऐप किए हैं। थैंक यू उषा आपके ऐप के लिए। एक है फिर मोयो नंबर, तरह तरह के लोग ये इसे गाने लगते हैं। सो हैप्पी मतन पॉपुलर नंबर इधर इन बखिंतम सिंह। जब ये रिलीज हुआ कुछ हफ्तों पहले, हमने तुरंत यहाँ उजाला रेडियो पर अपने प्रोग्राम में गीत को पेश किया है, और एक दूसरा वर्जन है लेकिन खूबसूरत है, और फिक प्रसाद इनका एक नगमा उषा जी के नाम। नॉकमाल उषा जी, थैंक यू वेल आपके लिए।

Fik për saat, Meri Pjarë Zenualo, tiri binë. U gjala radio hai ye Meri Pjarë Zenualo, aur u bhi 12 minit të guzer chukhe hai sare 8 bachkar. Meri Pjarë Zenualo, Apples ke naam geet karta hoon, hamesha saniwar jab bhi program sa jata hoon, Saturday Night Fever, Life and RIQ RK Studio Rotterdam se. Aur bahut sare log app karte hain, aur... जिस तरह से ऐप अंदर आए हैं उसी तरह से हम नगमाएं चला रहे हैं इस वक्त लोगों के लिए हमारे प्रिय सुनने वालों के लिए एंड आप सभी जानते हैं एक हाउ ऑन सेटन फील फॉर यूली जिस तरह से आप सपोर्ट करते हैं चुन किए करते हैं हमेशा ऐप भी किए करते हैं उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद हम कहते हैं आप भी चाहते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों आपने कभी ऐप नहीं किया है तो आज कोशिश कर लो 020-363-0808 तो यकीनन आपके लिए भी हम गीत चलाएंगे वेल इस इट सो कि आखिरी घंटा में हम दुआली मसूल्स तू जाने तो धमाकेदार नगमाएं उस आखिरी घंटे में हम नहीं करते वेल आल्सो सोमखे स्पेशल डाग सेन जैसे दिसंबर में एंड सो तू जाने तो जितना फॉर्मूला है सब बदल जाते हैं खुद ब खुद जरा मैं देखूं जरा मैं झांकूं हम फिर एक बार अम्स्टर्डम की ओर आपको ले चलते हैं और वो भी अम्स्टर्डम सेंट्रम जहां रिया कल्लू जी इत्मीनान से प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं रिया कल्लू जी को हम कहेंगे एंजॉय योर वीकेंड लेकर रिलैक्स न्यू लेकर टॉयस मेट यू आर और आपके नाम हमने एक गीत वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड के अंदर सागर मलिक जी की आवाज में खूबसूरत गीत रिया कल्लू जी के नाम

हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंडर में, सागर मालिक जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, नौ एक मेरक दत्त शारदा एट हार्लेम, सॉरी एट आरएनएम या आरएनएम मुत सेम, शारदा जी काम पर जा रहे हैं एंड फोर दत्त से खात फिट्स, से खात फिट्स नार हर वर्क। तो शारदा के नाम खूबसूरत गीत हम पेश करने जाएंगे। और शारदा जी थैंक यू वेल फॉर अट ऑफ स्टेम, एंजॉय और दिल लगाकर काम करना। एंड वी वेट टोटन फॉर केयर। ये नगमा जो मैं चलाने जा रहा हूँ मैं आपके नाम करता हूँ, और नगमा कुछ इस तरह से है जो संजय योढ़ा गीत गाकर सुनाएंगे। वारिस ये रिसत हाँ।

संजय योठा मेरे प्यारे सुनो लो, एक आखिरी गीत इस घंटे का, और इस आखिरी गीत के बाद खाओ ना ब्रेक फन नेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

Ja. De formatie Too Crazy uit Suriname. Babuji Sarad Hire Chalo. मेरे प्यारे सुनों ये उजाला रेडियो है और इस वक्त हो रहे हैं 11 मिनट ओवर द क्लॉक फन 9:11 गुजर चुके हैं। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे लाइफ एंड आर एक यूआर के स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूँ फिर एक बार प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर विद ब्यूटीफुल लोकल्स। मेरे प्यारे सुनने वालों और एपर्स का नाम गीत कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ हमारी लिस्ट पर मेरे प्यारे सुनने वालों जिन्होंने ये कश उठाए हैं ऐप करने के लिए अब 03 3 0 0 0 वो है अम्स्टलवेन का सुशीला चंद्रिका सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर शनिवार। और एक गीत जो काफी पॉपुलर है इन दोनों का, देवेंद्र सिंह सिवनाथ और सविता सिंह जी का गाया हुआ ये नगमा

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे से नॉलो मैं भावरा तू है फूल ये दिन मत भूल कि जवानी लौट के आए ना। सविता सिंह और देवेंद्र सिंह सिवना जी की आवाजें। अगले गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। एनन खावनार मैं स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और वो भी सुतमेड़ शहर में, तो उनके नाम गीत हम करेंगे और वो भी कुमार सानू टुगेदर विद इंडियन टेम्पटेशन एक पुराने एल्बम से निकाल रहा हूँ। फोर मैं स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी आयोजित सुतमेड़ Dankjewel, zwaag voor je appje.

जिए जा मेरे प्यारे सुनो वालों, जिए जा तुम खूब। द टाइगर कुमार सानू टुगेदर विद द इंडियन टेम्पटेशंस। मेरे प्यारे सुनो, मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ तो 7 मिनट बाकी हैं और वो भी 9:15 में। सिर्फ मिनट फुट क्लॉक फन हाल 3 हो चला है और आपको अगले गीत की ओर ले चलते हैं। एपर्स के नाम गीत करता हूँ मेरे प्यारे सुनो वालों, आप ही चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं। डन मुझे अपना 020-363-0000 020-363-0000। हाँ जी, मैं देखता हूं कि अगले की जो हमने तैयार करके रखा है अमस्टरडम के आईसी जहांगीर के नाम हम करेंगे। केवल आईफी आपके ऐप के लिए हमेशा आप चून किए करते हैं और सदियों से आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उसके लिए दिल से शुक्रिया डंकीवेल। तो आईफी जी, निजाम वागित हुसैन का गाया हुआ ये नगमा मैं आपके नाम करता हूं। अनहेल मुए साथ रखा

वादिया मेरा दामन और रास्ते मेरी बाहें, निसाम वाकित हुसैन की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। बैक टू द फ्यूचर में अगले गीत मैं पेश करने जा रहा हूं और वो भी रतनम सिराम का जो रहने वाली है, रोहिणी कल्लू जी के नाम करूंगा। तो रोहिणी कल्लू जी थैंक्यू वेल आपके ऐप के लिए, ट्यून करने के लिए हियर ऑन यू आर, और एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर शनिवार। एक बहुत ही खूबसूरत गीत विम दमरी का गाया हुआ विद द इंडियन टेम्पटेशंस, मैं नाम करता हूं रोहिणी कल्लू जी के लिए अर्थ श्री नाम रोटरडम।

दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, और ये बात तुम ही समझाओ हमें कि इस हार करें तो कैसे करें। द लेजेंड विम दमरी जी की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, अगले गीत ख्रोनिंग से जो ऐप आए हैं, ख्रोनिंग शहर से बेटी जी का ऐप डंकीवेल। बेटी जी आप जब भी सुनते हैं आप एंजॉय कर रहे हैं और आप ऐप करते हैं ये बताने के लिए। एक खूबसूरत गीत हमने तैयार करके रखा है बेटी जी, जो आपके नाम हम करेंगे। बस आप भरपूर एंजॉय करें इस गीत को, इस प्रोग्राम से अतिथि नाइट फीवर को, और नटूरलक अपना वीकेंड, अपना शनिवार को खुरुचे सानी दरिंदार एंड डंकीवेल बेटी जी।

ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, लता जी का पॉपुलर सॉन्ग फिर से सजाया और गाया गया है। हियर ऑन यूआर हमने आप तक पेश किया है और अगले गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। और गीत जो है हम नाम करेंगे मार्सब्रुक में जो रहते हैं हिरेंद्र जी और चित्रा जी, इन दोनों के नाम करेंगे। और डंकी वेल हिरेंद्र जी और चित्रा जी, आप कैब के लिए आप भरपूर एंजॉय करें आपका शनिवार, आपका वीकेंड और ख़ास करके ये नगमा और प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर हमेशा जुड़ने के लिए और आप कैब के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आजकल के जमाने में तू कौन दामाद मांगे रे?
1: या या या, सब दामाद मांगे, मफ़ा उसमें कफड़िया के ना मांगे। Well, wat is er mis mee? We zijn toch allemaal mensen. Dispedil lag gaya. To samjho lag gaya. Wo nahi dekhta hai ki kya color hai uska. Gareeb hai, ameer hai. Ye dil kabhi wo cheez se nahi dekhta hai. मेरे प्यारे सुनो, मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ तो धीरे धीरे हो रहे हैं 11 मिनट ओवर द क्लॉक फन 3। 11 मिनट गुजर चुके हैं ऑलमोस्ट 10 बजकर। ये है आप ही का मनचाहत फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और आप सभी सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतन नाम से। और जितने लोग भी ऐप किए हैं 020-363-0008 पर, उन सभी के नाम से गीत चला रहा हूँ और दो घंटे चला चुके हैं। अब तीसरे घंटे में हम जा रहे हैं। मैं देखता हूँ शायद आखिरी घंटे में भी मुझे जाना पड़ेगा, आप के लिए चलाना पड़ेगा मुझे गीत। कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स आए हैं अंदर। En natuurlijk, je mag nog steeds wel appen, hoor. Je hebt lekker aan bollen bij. Hou, stop. Doe jij niet toch? Daarna ga ik je horen, maar ik wil je chillingen. Jaha, ze Mieke, programma ze joren hoe hij. Toen Mieke, dank je wel, aap ik je appje lie. En Mieke, ja, ik was vandaag in jouw stad Den Haag. Even lekker gesweerd, lekker broodjes gegeten en wat shopping gedaan. Mazaya, we hadden nog een baat gehad. Tomieke, fijn dat je afgestemd bent. Enjoy. You are enjoy Saturday Night Fever. En ik heb hier denk ik een mooie Mary J. C. Hasina Kadil mix. The King of Hindi Pop, Umar Waghi to Zain, Mika ke naam karta hoon uit Den Haag.

0: परेशान।
1: या मेरी जैसी हसीना का ये मिक्स एंड दैट वाज नेचुरली द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागिद हुसैन एंड फोकस में पापे मान। मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं देखता हूं तो 9 मिनट बाकी है सारे 10 बजने में और एपर्स को हम कहेंगे हैप खडोल्ट अल्स टू ब्लिफ। ये मुत एव वक्त फॉर दैट आपके नगमा हम चला पाएंगे, लेकिन सभी के लिए हम चलाएंगे जो लोग ने ऐप किए हैं, घबराइए मत। डनाग की ओर, सॉरी हम अम्स्टर्डम की ओर, या एक मुतना डनाग बेन एक नेट गवेस वहां न्यू नार अम्स्टर्डम। अम्स्टर्डम की ओर आपको ले चलते हैं जहां कतरीना प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। कतरीना डंकी वेल आपके आपके लिए, एंजॉय योर वीकेंड सैटरडे, एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड के अंडर में सागर मलिक का गाया हुआ एक नगमा मैं कतरीना का नाम करता हूं। डंकी वेल फॉर ये एपी कतरीना डेज़।

दिल था अकेला अकेला और साथी मिला अलबेला, सपने में भी सोचा ना था अपना कोई बन जाएगा। द सिंगर ऑफ रोमांस बीस महावीर जी की आवाज। वखान नार स्वाख इन नॉर्थ होलैंड, जहां पर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं हेडवाल्डो मरखड़ी जी, बितिया रानी शरीदा और दुस्का। तो हेडवाल्डो जी को, मरखड़ी जी को, शरीदा जी को और दुस्का जी को अलमालदार अन मोये सैटरडेगावंड। गनीत फन युरी सैटरडेगावंड, गनीत फन इट वीकेंड, गनीत फन इट मोये सॉन्ग व्हाट इक फॉर युरी गा स्पेलन, एंड नैचुरली Van Saturday Night Fever and you are Ujala Radio.

या वुचली वुचली मिक्स मेरे प्यारे से नॉलो शनिल ननु और साथ दे रहे थे रोहित छेड़ी इन दिट वॉज नैचुरलक Twee geweldige zangers uit Hamari Priye, Suriname. Mere Pierre Sinualo. We gaan vanuit Zwaag, Noord-Holland, naar United States of America. Verenigde Staten, de staat Dallas. Waar die he? Sunita ji aur Ajay ji. Aur hamesha tune kiye karte hain. और जब भी चुन किए करते हैं तो एब भी करते हैं तो डंक यू वेल फ्रेस लुक फ्यू ली रतदार सुवर मिस होप दैट यू ली एरगन सेन वर इट लेकर कूल इज द स्नोस में द एरको आन फाइन दैट यू ली अफगस्टम सेन ऑफ यू आर उजाला रेडियो और सुन रहे हैं प्रोग्राम Saturday Night Fever. आप सभी के लिए वहाँ सुनीता जी और अजय जी दार इन टेक्सस इन USA एक गीत हमने तैयार करके रखा है इस वोडियोली अलमालदार एंजॉय

या राहुल बिचन मेरे प्यारे सुनने वालों, इनकी आवाज में गीत आप सभी ने अभी सुने हैं। हम अम्स्टर्डम की ओर चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। अम्स्टर्डम में सबिता भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। सबिता दंकीवेल, सबिता जी आपके ऐप के लिए फैन अच्छे अफगस्तान बैंड ऑफ यू आर उजाला रेडियो और सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय योर वीकेंड। और मैंने गीत जो तैयार करके रखा है सबिता के नाम एट अम्स्टर्डम, द लेजेंड शहीद वागितुसैन।

द लेजेंड शहीद वागितु सैन, मेरे प्यारे सिनवालों। और तुरंत अगले गीत की ओर आपको ले चलेंगे, एकदम फेयर्स फंड पेयर्स, लकी सिंह का गाया हुआ नगमा। हम नाम करेंगे माइस के नाम, जो इस वक्त फकांसी से है कहूं। एंजॉय माइस, एंजॉय डंकी वर्ल्ड फॉर यू।

शेखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनो वालों, नहीं देखा कभी पहले ना पहले कभी देखा, खूबसूरत गीत सेवा में जो पेश हुआ है मेरे प्यारे सुनो वालों। इस वक्त मेरे प्यारे सुनो वालों स्टूडियो आए थे 11 मिनट ओवर द क्लॉक 11, 11:11 गुजर चुके हैं। रात्रि में 12 बजे तक ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर पेश करूंगा हियर ऑन यू आर लाइफ एंड आर एक यू आर के स्टूडियो रतनराम से। मैं हूं आपका यारो का यार रतन राम लाड़े पांडे और द लोकल्स सेवा में 7 बजे से अब तक पेश कर रहा हूं। और एपर्स के नाम मैं गीत पेश कर रहा हूं इस आखिरी घंटे में मेरे प्यारे सुनो वालों। खावन तालामाल में सोल्स दून खली सोल के नगमाए इजी लिसनिंग सॉन्ग्स रोमांटिक सोल्स आप तक हम पेश करेंगे। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते उजाला रेडियो का जो वेबसाइट है www.ujala.nl पर जरूर खड़ारी कहकर तरह तरह की इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगा। अमस्टरडम में सुन रहे हैं प्रोग्राम उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं सत्या जी। तो सत्या जी दंकेवेल आपके ऐप के लिए एंजॉय योर वीकेंड। बेहद खुशी है हम कि आप फिर एक बार चून किए हुए हैं। आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रजेश जगरूप और प्रशांत रामजतन की आवाजें ये नगमा आपके नाम करता हूं सत्याजी आयतम सदम।

जाने मन तुम हो कहाँ, तन्हाई और मैं हूँ यहाँ, तेरे बिना जिंदगी कुछ भी नहीं, बस यादें तेरी बातें तेरी मेरे दिल में बसी। प्रशांत राम जतन, मेरे प्यारे सिनोल और राजेश जगरूप जी, मैंने फरमासी म्यूजिक फरमासी स्टाइल्स। हम तुरनहाउट की ओर आपको ले चलेंगे। तुरनहाउट में सुन रहे हैं प्रोग्राम, जुड़े हुए हैं सुनीता एंड डॉक्टर खुशी। थैंक यू ऑल सुनीता फॉर योर अपीयर एंड ओक थैंक यू ऑल खुशी फॉर द स्टेम। फॉर यूली बैड हैपिक संजय योडा क्लार्सन। खनित फन यूली वीकेंड, खनित फन यू आर एंड खनित फन Saturday Night Fever.

संजय योठा मेरे प्यारे सुन वालो, मैं अगर कहूं या प्रख्त खनुमर हियर ऑन योर सैटरडे नाइट फीवर में, और तुरंत आपको ले चलेंगे एम्स्टर्डम की ओर। एम्स्टर्डम में भैया सुनील प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। दंकीवल सुनील जोड़ने के लिए उजाला रेडियो के साथ और ट्यून करने के लिए बेहद खुशी है हम कि सुनील आप भी सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर एंड आलते तलशदा दूध। तो आप ये कश उठाते हैं एक छोटा सा ऐप पठाने का, उसके लिए बहुत बहुत बहुत बहुत डंकीवेल धन्यवाद। सुनील ये गीत जो मैंने तैयार करके रखा है रोहित और रायन फन फरमासी द स्टार्स अच्छी नाम सुनील के नाम।

आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। रोहित और रायन फन फॉर्मेट सी द स्टार्स सूरीनाम जिसका हम स्क्रीवनिंग की ओर आपको ले चलेंगे अब की बार आमस्टरडम से सीधे स्क्रीवनिंग की ओर जहां भैया लक्ष्मण प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उजाला रेडियो को सुन रहे हैं भैया लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया लक्ष्मण जी चून करने के लिए आपकी ऐप के लिए चून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेहद खुशी है हम कि आपने चून किए हुए हैं और ऐप किए अगले गीत मैं आपके नाम करूंगा लक्ष्मण भैया जी और आपको तो मालूम है लक्ष्मी जी तो हमारे दिलों में है शिखर कुमार का गाया हुआ एक नगमा आपका नाम करता हूं

गीत गाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, तुमसे ये मैंने वादा किया है, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराता भी मैं। खूबसूरत गीत किशोर कुमार का एक नगमा शेखर कुमार ने अपने ही रंग और ढंग में फिर से गाए हैं, सजाए हैं और आप तक बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ हमने प्रोग्राम में पेश किया है। वैसे तो हॉलैंड में रहते हैं लेकिन स्वागरी हमार सरवन नाजी और मेरा जो सरहज है दूर वहां मेक्सिको में वहां प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो पर चून किए हुए हैं, सुन रहे हैं प्रोग्राम से द नाइट फीवर। तो स्वागरी सरवन नाजी और सरहज जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम कहते हैं चून करने के लिए, ऐप करने के लिए, इतनी दूर जाकर भी आपने चून किए हुए हैं। तो बस उजाला ही उजाला है इस वक्त आपके पास, आपके दिलों में। और मैंने गीत को तैयार करके रखा है मुका सिंह की आवाज में। मुका सिंह की आवाज बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत गीत भी गाएंगे, एक प्यार वाला। तो स्वागरी सरवन जी के लिए एंड फॉर सरहज, थैंक यू वेरी मच।

मुकासिम की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत गीत आप सभी ने सुने हैं, एंड दिस इज सागर मलिक।

पक्षियों को रहने दो अखियों के आस पास। सागर मलिक जी की आवाज में गीत हमने पेश किया है मेरे प्यारे सुनने वालों। अब वक्त ऐसा ही आ गया है कि अब मुझे आखिरी नगमा अफसोस के साथ आप सभी की खिदमत में पेश करने का वक्त आ गया है और इस आखिरी नगमा के बाद हम यहां से रुखसत होंगे, स्टूडियो से रुखसत होंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, आज भरपूर आप सभी ने साथ दिए हैं, बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम सजाया गया है, खूबसूरत नगमाएं हमने कोशिश किया है निकाल निकाल कर आज की प्लेलिस्ट से आपके सेवा में पेश करने का। बस यही उम्मीद और आशा के साथ कि आप सभी ने भी भरपूर एंजॉय की है। जितने लोग भी आज साथ दिए हैं, ऐप किए हैं, चून किए हुए हैं और दूर दूर से भी लोग, देखो ना, मॉरिशियस, कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका और सूरीनाम, जितने लोग भी ऐप किए हैं, कुछ लोग तो कहा कि द्राई नेक्स हो मैं वन ए खासू वीर वेख, लेकिन छोटा रूप में भी जिन लोग ने सुने बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे प्यारे सुनो, अगले हफ्ते मैं आप सभी की सेवा में फिर आएंगे सेवा करने अब दून सहावंत बुधवार के रात्रि को 16 सितंबर को पेश करेंगे बैक टू द फ्यूचर। 17 सितंबर को वो है बृहस्पतिवार, दिल की आवाज, और ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर शनिवार 19 तारीख को हम पेश करेंगे। आज मेरे प्यारे सुनने वालों, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू लीवेल। रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल।